व्यापै, एक संचह गिरिहि तिन हुए ना आपै, एक सती कहावह तिन बहुत कल पावै, हम हर राखे लग सतगुरु पावै, तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे।

हर जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रहे सुमाई आसा महला पंजुआ निज भगती सी।

वख वख परमावे घर की नायक घर वास ना देवे जतन करूं पुरजाई परेवे रहाउ तुरकी भेजी आ।

समाना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जान है एह लोग अजाना रहाव, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सोभा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान, साधु कुचियां सत

फिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना

ते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

ना मुआ हुए तिस निश्चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया। गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा। जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला। प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल। आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी। जान

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कबहु ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोह को पिरह मिलावे रहाउ चार पहर चहु जुगह समानी रैन पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी ब्रह्म भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाउ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवा कर किरपा हर प्रगति आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई। पाए न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाउ। तोट न आवे नखुट न जाए खाए खर्च मन रहया अगाए। सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना। इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार।

दिन ते सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरह।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाव भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

रहाउ। त्रिपत अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय। सब मैं जानू करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक। दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास भई मत पूरी। तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले। बूढ़त कोर अंध

जिसह प्राप्त तिस ही देह, नानक चाख भये बिस्माद, नानक गुरते आया साध, एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे है, ता प्रीतम होवे है मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मालुख देवरिया गोविंद मिण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कित ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाये गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवा औखद खायो हर को नाओ सुख पाए दुख बिन सिया थाओ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावे है किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे पूर्ण पार ब्रह्म।

जंत करहें चतुराई जा सब किस तुझे मजहार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म मैं सोई सगल जगत धन अंध को जागै हर।

सुख नहीं दरगाहा ढोई, जामपुर जाए पचावै, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच ना साकै काहू बातै, आगे ठौर ना।

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा बर्मी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाउ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रवाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

आवे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुरे आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागे।

पियाया। रसक रसक बिगसा नारी आसा महला पंजवा। बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया। होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया। गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महाभव जल ते। अपनी नदर निहाल रहाओ जा कै सिमरन जमते। छुटिया हलत पलत सुख पाई सास ग्रास। जपो जप रसना नीत नीत गुण गाय।

मुक्त पए अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काढ लिए निरपव पए सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

बहुत तिन जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ले हो रा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पाव तरलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संगरलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां, जहां पठाव हो तह तह जाई।

उठत बैठत सोवत त्याई, मार्ग चलत हरे हर गाई, श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले नथा रहा, कार्ज काम बाट घाट जपीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाई, सो जन जम की वाट न पाई, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पा।

आवै कोई। सगल श्रेष्ठ अवां के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सो

निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुन गावो, संत प्रताप साध कै संगी, हर हर नाम त्यावो रे रहाओ, सगल समगरी जा कै सूत परोई, कट कट अंतर रव्या सोई, ओपत परलोखिन मैं करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, कर्ण कराम ने अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा, कोट जन्म के रहे पवारे, दलाब देह जीती नहीं हारे, किल बिख बनासे दुख दर्द दूर, पये पनीत संतन की तूर रहाव, प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस भेटे जिस तुर संजोग, मन आनंद मंत्र गुर दिया, तृष्ण बुझी मन निश्चल थिया, नाम पदार्थ नौ निद सिद्ध,

पये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाव। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाना लागा मीठा। गुरपुरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां सतगुर अपना सद सदा सम्हारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे। बिन हारे

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखो एक ओही, घट

खोया, आनंद रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा, मुक्त सियानप किशु ना जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, करन कराव नहार प्रभ सोए, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी, जप तप

मुख हर हर बोले, सोजन इतोत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला ताके संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोई, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किस करे सोई पा।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवां, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दू

माया मद माती जागत भगत सिमरत हर राती रहाउ मोह परम बहु जोन पवाया अस्थिर भगत हर चरण त्याया बंधन अंद कूप ग्रह मेरा मुक्ते संत बुझह हर नेरा कहो नानक जो प्रभ सरनाई इहां सुख आगे गत पाई।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा, आसा महला पंजवां, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी,

ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कहो मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

सब हुमा गर्भ मोह तज हो रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमक निमक एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उदार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले।

तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छुट्टो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गुआई निर्गुण मिलियो बजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अगरक उसके वडे ठगाऊ छोड़ह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हार।

सगल धर्म हर के गुण गाम। महा पवित्र साधका संग, जिस भेट तलागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकी गात मित कह।

गोर लाए, नानक आए पए सरनाए। आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही, बहुर बहुर

रखे लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा।

हर जसै अगानी जप जप जीवा सारग पानी करन करावन सरन परिया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै।

मेरा धन सोहागा। कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर। बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया। हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया। ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पनह चरना, तट तीरथ भवे सब तरना। से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जाका दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहे निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहूं जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाव, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बाणी रसना चाखे वड्डे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला।

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सत

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

साह साह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यों पावे त्यों राख राखण हारिया तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है।

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रहन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

हर नाम मजीठै रंग री त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राए री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

सर्व सुख पावों आज्ञा पावों के ना पावों। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हो मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ।

समारी नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पाव संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जीही गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर तू

गंधण वहन सुनह उर जावह, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पर तन पर तन परती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच धर्म स्यो रुच नहीं आवै, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजै अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटे, बहुर बहुर जनमाते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवे, आसा घर ग्यारवा महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओह तै सारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुख नाही परवे सारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर आनी तारी, साध संग मिल हर गुण गाय। एहो जन्म पदार्थ जीतारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी। कहो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारे। तत नानक एहो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोलक। मन मानक पतियाना रे, आसा महला पंजवा दुपदे। गुर प्रसाद मेरा मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे। हमरा ठाकुर सबते उच्चा, रैन दिन से तिस

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मनते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे हिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग।

महा भौजल लंघी है सदा हर गुण गाव जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिव लाओ रहाओ वेद शास्त्र जन

त्याग सगल से आणपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाये संगी ऊंच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बद्दी वड्याई जप जीवै नानक नाओ आसा महला पंजवां उदम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई आ।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काट मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

आ द्वापर भणिया कल युग उत्तम जुगा माहे एह कर करे सो एह कर पाए कोई ना पकड़ी है किसे थाए हर जियो सोई करह

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

सोहिना कारण करना तारण धरना एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याव हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईए सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हो।

अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाउ जो प्रभु भावे जन्म ना आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे प्रभु संग मलीजे एहो मन दीजे नानक नाम मिले।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेख ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अभरात्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए।

प्रभ त्याव भ्रम पीत जीत मटाव निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोबिंद नाम हर भजन सफल का।

धूड़ ना रहा, अनन उपाव कर हां, तो निकसे सरन पैरी सखी, थेर थेर चेत थेर हां, बान ग्रहो सम

कार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रसे हो दस हूं दिस धावत आसा लागे हो धन की रहा।

देव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यू डोलत नह सुध राम भजन की मानस जन्मे अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावे बकै न बोलै हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत झोल महारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावे सतगुर शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाद लगावे पारस परस परम पद पावे सच मन कारण तत् बलोवे सुपार सरवर मैल ना धोवे जैस्यो राता तैसो होवे आपे करता करे सो होवे गुर हे वसी तन अगन बुझावे सेवा सुरत बेभूत चढ़ावे।

कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै तां सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखै रखवाला त्रे भवन सूजै आप गवावै बाणी बूझै सच समावै शब्द विचारे एक लिव तारा नानक धन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मानिया सच सुरत बखान कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार लेख असंख अलेख।

जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन को।

को रोवे दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौं बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आपने।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख।

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन ते मन ती।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

लह संधान जिस कायन तन सहज ना जाना परम भुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे नानक गुर की चरणी लागे आसा महला पहला गावह गीते चीत अनीते राग सुनाए कहावह बीते बिन नावै मन झूठ अनीते कहां चलो हो मन रहो करे गुरमुख राम नाम त्रिपतासे खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाने अंतर की गात गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाने निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊ गुर प्रसादी कर्म कमाऊ नामे राता हर गुण गाऊ गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

शब्द ना पछाण है, गुरमुख निर्मल नाम वखाण है। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास।

नानक राम नाम मन राता, आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हउमै कौरा, रहाउ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेलै, काल कंटक मारे सच पेलै, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रे भवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली।

ग्रास इकत थाएं कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के।

0: दुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

कहा संचह धन जाए बिन हर भगत ना पवी थाए बंधन बेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राखे बंद ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर।

गवाइयां रंग तमाशे चाहे बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए इक ना वक्त खवाई है इक ना पूजा चाहे क्योंकि बिन हिंदवाणिया क्यों टिके कड है ना आए राम ना कबहू चेतेउ हुण कहण ना मिले खुदाए एक घर आवे अपने एक मिल मिल पुछ है सुख एक ना एहो लिखिया बह बह रोवे दुख जो तिस भावे

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सुपान तंबोली हरमा हो या शाई माई इस जर कारण घणी विगुत्ती इन जर घणी खोआई पापा बा

नीत नीत घर बांधी है जे रहना हुई पिंड पवै जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करहो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनु तुम कौ कौन रोई।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल मह के तारा राखी है

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना

सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप न जाही लखणे क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खाणी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिर आणी चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताका हुक्म न बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगह जुगह के राजे किए गाव है कर अवतारी तिन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देह ता साच वखाणी जा को सच बुझाव है अपना सहजे नाम समाणी आस्था महला तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया।

अपसार हर जीव मन वसै सब दुख वसारन हार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रिपवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारी सेवड भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाई सोई सतगुर नाम बुझाया बिन नामै भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल की

कराई, आपे गुरमुख नाम वसाई, आप भलावे आप मार्ग पाई, सच्चा शब्द सच समाई, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावे सब फिरे बहुराणी, तीन भवन मह एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाओ दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सबाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अन दिन भोगे हों मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए हों मैं मार, हर जपिए पहे सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै, जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वड्याई, एको नाम चेत मेरे भाई, जग

घर घर पाया भगती भरे भंडारा गुरमुख नाम त्याई है बूझे विचारा गुरमुख भगत सलाहा है अंतर शब्द अपारा गुरमुख सुख उपजे दुख कदे ना होई गुरमुख हम मैं मारी है मन निर्मल होई सतगुर मिले है आप गया त्रे पवन सो जी पाई निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मलाई पूरा गुर समझाया माति उत्तम होई अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई पूरा सतगुर ता मिले जान नदर करे किले विक पाप सब कटी है फेर दुख बिघन ना होई अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाई नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाई आसा महला तीजा सुन मन मन वसाई तू आपे आए मिले मेरे भाई अनदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वडियाई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सब ना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप पवाली दितियन अंतर लोभ वकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोझी होई कोय भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुरु।

बाहर किसना ही गुर प्रसादी पाई है, अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाईए पाई। अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ, हर का गाहक होए सो लय पाई रतन विचारा। अंदर खोले दिब दिष्ट देखे मुक्त भंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा। मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा, पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई। नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई, बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई। भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई। चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई। नानक

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नामे कोई ना मनिए मनमुख पथ गुआई जमपुर बद्दे मारिय है बिरथा जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम हो ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनो देवै तिस मिलै गुरमती नाम बुझाई नानक सा

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सुआरियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावे है फिर अपना सच्ची सेज सुपाई फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाई ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सबराई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जत पत शब्दे होए बिन नावै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द हों ना जाई नानक नाम रते तिन हों मैं।

ठीक है। बहुविध श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार, एक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार, एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए, नदर करे जिस अपनी तिसनु भावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल।

सच्चा शब्द विचार अवगण गुणी बख्शाया हर सिउ लिवलाई हर वर पाया कामणी गुर मेल मलाई रहाओ एक पिर हदूर ना जाननी दूजै परम भलाए क्यों पाए निडोहागनी दुखी रहन विहाय जिनकै मन सच वसिया सच्ची कार कमाए हन दिन सेवह सहज सिउ सच्चे माहे समाए दुहागणी परम भलाइया।

कर गए पल्ले किस ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए हस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजी हर गुण गाए रहाओ मनमुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाए गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत लाहे लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन निरावे फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हों मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनहा बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जा प्रभ मेलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

सीधर सच्चे जान आसा महला तीजा शब्दों ही भगत जाप दे जिनकी बाणी सच्ची होए विचो आप गया नाउ मन्या सच मलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सफल तिन्ना का जन्म है तिन माने सब कोई रहाउ हऊ मैं मेरा जात है अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवे निध पाया परे अखुट भंडारा आवह इस राशि के व्यापारिये जिन्ना नाम प्यारा गुरमुख होवे सो धन पाए तिन्ना अंतर शब्द विचारा भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी तुरहों आप खुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना होवे ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाई गुर भगती मन धीर जिसनो भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय को नाम वसे हमें दुबदा मार भगतां की जात पात एको ना।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई बिन कर्मा किश पाई है नाही क्या कर कहया जाई आप पछाण है शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाई इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करहे श्रृंगार पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाणे मुख उजली तित सच्चै दरबार आसा महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर ज्ञान।

बहुत सहज सुख के सब हाट साहा व्यापारी एकै थाट जे जिया दन को लय ना जगात सतगुर कर दीनी तुर की छाप वखर नाम लद खेप चलावो लै लाहा गुरमुख घर आवो सतगुर साह सिख बन जारी पूंजी नाम लेखा साच संवारे सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव अब चल नगरी नानक देव असावरी महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाव दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार करो अनग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार मन परदेसी आया मिलो साध कै संग जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए सब जग चल तो पेखी निहचलार को नाम कर मित्राई साध स्यों निहचल पाव है ठाव मीत साजन सुत बंद पा को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल बोहित भय लग सागर तरयो ते भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हस

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरनी पाए जो जन राते राम स्यों प्यारे अनत ना काहू जाए हर रस जिन्नी चाखिया प्यारे तृप्त रहे आगाए अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाई। जो तू कराव है सो करी प्यारे अवर किछ करन ना जाई। दिन रैन सब सुहावने प्यारी जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे नानक।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया कै संगल बंद लया खखै खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगै गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कर भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहै तई किया कगै काल सेवक जे कालै शब्द गुरु कै लाग रहै बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रहै चचै चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजै जान मंगत जन जाचै लख चौरासी भीख पविया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया छजै चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे दे वेखै हुक्म चलाए।

सब थाई एक वस्या मन माही तत्तै तंच करहू क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठै ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डै दंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरेव हो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया ढड्डै ताहे उसारै आपे ज्यो तिस पावे तिवै करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणै रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्तै तारू पवजन हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्तै थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष करमा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना तद्दै धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने ना हां भोग नित भोगै ना दीठा ना संभलिया गली हो सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया देखै बूझै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया फप्पै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंध लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर सरनागत भज पया बब्बै बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालन आप लगा पब्बै पल है से फल पाव है गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाणै गुरमुख आखै गुरमुख बूझै गुरमुख एको जाणै रारै रव रहया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहया राड़ै राड़ करहै क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हा है होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर

कराई सब किस जाने नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंगे काल पया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया।

मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रली आला राम तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिरह मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सेजा सुहावी संग पिरकै सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यो भावे त्यो रावे तन मन पिर आगै शब्द सुभागै घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारे हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जां प्रभ भाई पंच मिले विचारी काम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा।

वाद पुरख अपरंपरु तारे राम अगमय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला संत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बिचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हारह हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकि सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सूकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहे जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद
आसा महला पहला संत घर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़ी है राता राम दिख फल मीठा चार दिन फिर हुए ताता।

का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे साचे नाल तेरा गंध लागे गुरमुख सदा संभाले यूं कह नानक जह मन तू धामदा तह हर तेरे सदा नाली सतगुर मिले तावत थमिया निज कर वसिया आई नाम विहाजे नाम लई नाम रहे समाई तावत थमिया सतगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजै जित शब्द जगत थम रहा।

ना सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई। मन शांत आई बजी बधाई।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जां तिस पाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया पाओ चुकाया, इयों कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चित आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए,

कथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम हर नाम

पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भारती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारत बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतने अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गुआया राम, गुर परचै त्याया,

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवित्र।

गवाई मन तन सीतल शिंगार सब हुआ गुरमत राम परगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम वसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम किन अंतरे मोह व्यापै खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड पय अपागी जिन राम नाम नह पाया अनेक कर्म करह अभमानी हर रामो नाम चुराया महाबिखम जम पंथ दुहेला कलू खतम हो अंधियारा नानक गुरमुख नाम त्याया ता पाए मोख द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम एहु मनुआ खिन ऊब पयाली परम दा इकत कर आणै राम मन इकत कर आणै सब गत मित जाणै।

नाम वसै किन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाई। दुर्मत कुबुद्ध गई सुध हुई राम नाम मन लाई। सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम परगासिया। नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया। जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम। जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम। राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

इस जुग में तुलहा जम काल नेड़ ना आवे नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मलावे राम राम नाम सते सत गुरमुख जाने राम सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम मन तन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

जुग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपिया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अरादिया जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल जुगी उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु,

मन तन हर गावे हैं, परम सुख पावे हैं। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ। शोभा गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर ना कोई। हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत युग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। तेता जोगे आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए दियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जोग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, अत किरिया कर्म कमाए दियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए दियो। महाजुद जोद बहुकीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सतगुर मल लह जाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर।

मन भाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रदान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है, जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै, सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तां की गत कही ना जाई अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

अगोचर, आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब मैं रहया समाए जियो। काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत ना पाया, किस रूप नारेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई, ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावह, सब तेरै शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै, तेरै शब्द वडियाई। गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ, शब्दे रहिया समाई। तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ।

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

मुचताए गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी बछुने राम राजी मेरा मन तन बहुत बैरागिया हर नैन रस भिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मन्ने हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बनज है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब भांडे तुदै साजिया।

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा मन वाद हाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिठा, हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा, जन नानक हर हर होया, हर

हर जुग जुग भगते उपाया, पैज रख दाया राम राजी, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारियां।

करे, मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे, नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे, भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे, नानक हर उर तारे, फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन

रुत्ते फिर बाजड़े हो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लुत्ते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुत्ते गुरु नानक दे।

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर टुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख।

भया गृहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणे साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियों मन।

सोहे बंक द्वारी नवनि दे नौनि दे मेरे घर मह आई राम सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नव निध पाई सरस अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

0: हर रंग माणी
1: हर संता हर संत सज्जन
0: मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे ब्रह्म पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता, घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे, बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुर सरन तरिये अपने प्रभ पावा, आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे, मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे, हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे, गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे, प्रियो सह

ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजी गुर पूरे अपदेसिया जीवन गत पाते राम राजी जीवन गत स्वामी अंतर जामी

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना।

पंथ भणीऐ तह साध संग ना डरपीऐ कर कीरत गोविंद गुणीऐ सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यों नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करी जय इहो मन दीजै हथ लाइय के

कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हरसियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद दिन अर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग की जी है। हर प्रीत करी जै मान ना की जै इक राती के हब पाहुनिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावनिया। थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो किती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिन अर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै। जैसे तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लाल दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया।

गीत की जय। आस्था महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जा को खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराध ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत हुए गते। कोट बिसन अवतार शंकर जटा तार, चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरख प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल नानक मिलिए संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी। अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है दुख दर्द भ्रम जाए। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए। भेटत साधु संग जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापे नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण ने कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल पल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोज।

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावै नानक वखाणै गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्वणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुरबचन जाने जा को राम पतार ताके आनंद कणा आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

तन सुखी होए। अंते मिले गोपाल चंत, मिलो संपन कै संग, मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामू सरन पावो, करना मैं प्रभ कर्मया। समर्थ अगत अपार निर्मल,

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम करम अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत न

संग मीठे भोग सोहन भ्रमत भार अगंत आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन ने धाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपव पये पराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भय राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अगन सागर भय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरल किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवां शंत कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारे जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो ताज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखहगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां कुछ है कहो कंत नी छाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मुहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या
तन पसम टेरी जम है हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाणा संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन पापा कमाणे छड्डह नाही, लै चले कट गलावया हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ, क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया, क्यों तरियै तारी तरण देहि ला पया, खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु गुजा कमाणा प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे, लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ आप जगत तराया, राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करनी, नानक नरक ना जाहे कबहू हर संत हर की सरनी।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिद चरण गहे तां केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हम्यों हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे।

आयो माथे जिस पास लकाइंदड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाईए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दुख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहे।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाहि। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माहे बिनवंत नानक।

कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद बचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर

करत न लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार। एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार। महला पहला नानक गुरु ना चेतनी माने।

भेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी

कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन हो है शार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिले सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया

ज्ञान में होनी। खाए गया जम काल महला पहला, वायन केले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए।

कोलू चरखा चक्की चक, थलवारो ले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई है जंत, नानक पौंदिया गणत ना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसे है चल है से रोए, उड ना जाही सिद्ध ना होहे, नचन कुदन मन का चाऊ, नानक जिन मन पाओ किन्ना मन पाओ, पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है, नाए लय नरक ना जाई है, जियो पिंड सब तिसदा, देखा जय आख गवाई है, जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाई है, जे जरवाना पर हर है, जर वेस करें दी आई है, को रह ना परिये पाईये, सलोक महला पहला, मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नाव है अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

वंदना फिर फिर जोनी पाहे। हों मैं कितों उपजे कित संजम एह जाए। हों मैं एहो हुक्म है पये किरत फराहे। हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनहो हित संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदै पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

मल उतरै तन करे हच्छा तूय सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल जे एक होए ता उगवे रुती हूं रुत होए नानक पाहे बाहरा पूरे रंग ना सोए भै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक भगत।

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करह प्यार। धर्मी धर्म करह गावावह मंगह मोख द्वार। जति सदावह जुगत ना जानह

की लेखै पत पवै चंगे सेई के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं

मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया, बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ, नाउ खदाई अल्लुह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आव है आस कर जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके कामना आवे है पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत, सब को निवे आप को पर को निवे ना कोई, तर तारा जू तो लिये निवे सो गौरा होए, अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा हे, शीस नवाए क्या थिये जा हृदय सुधे जाहे, महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम, सिल पूजस बगल समाधम, मुख झूठ बेपूखण सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं, गलमाला तिलक लिलाटं, द्वे तूती बस्तर कपाटं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्मं, कहो नानक निश्चौ त्यावै,

आई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसम का महल पाए सी खसम भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

भाग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदै लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहै कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड्डी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

आज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोई नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी

तेत जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नाम अस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगण वे पंडो हो ऐ दोस्ती पंडो हो चल राह पांड मोआ पांड पालिए पांड हो ऐ बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोई जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है।

किसनो अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

उपाइय नानक सा करमात साहिब तुठै जो मिले महला दूजा एक ने ही चाकरी जित भौ खसम ना जाए नानक सेवक कहडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत ना जापनी हर ता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई इक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पै सवन एक ऊपर रहन खड़े।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो।

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग ओए हर के संतन।

चरावह ऊपर काठी धोए जलावह बसदा खोद करह दोए चूले सारे मान सखावह वे पापी सदा फिर है अपराधी मुखों अपरस कहावह सदा सदा फिर है अभिमानी सगल कुटंब डुबावह जित को लाया तित ही लागा तैसे कर्म कमावह कहो कबीर जिस सतगुर भेट पुनरप जन्म न आवे आसा।

कया न बाजी हारी मुई मेरी माई हौ खरा सुखाला पहरो नहीं दगली लगे ना पाला रहाउ बाल किस बापै जिन्हों जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया पंच मार पावा तल दीने हर सिमरन मेरा मन तन पीने पिता हमारो वड गोसाई।

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एक ठाहर दोहा बसेरा कहो कबीर जन एको बूझया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो बहन भानजी जिन्ह

काल आगम निर्गम ज्योतिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इो राम जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पहर चोलना गदहा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम ककरिया बरे पकाए किने भूजन हारे खाए रहाओ बैठ सिंह कर पान लगावे कीस गलौरे लियावे कर कर मुसरी मंगल गावे कछुआ शंख बजावे बंस को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुन गाए।

शब्द सुनाया आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिस द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पांच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकरी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई।

जव नहीं हटै गोसाई दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाव तन कर मटकी मन माहे बलोई इस मटकी मह शब्द संजोई।

पैसूता बुझ गई अगन नानक सियो धुआ रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाउ टूटी तंत ना बजैर वाब भूल बिगारे अपना काज कतनी बदनी कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

समझावों। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरे मालनी, पाती पाती जीओ, जिस पाहन को पाती तोरे, सो पाहन निर्जीओ। भूली मालनी है एओ, सतगुर जागता है देओ रहाओ। ब्रह्म पाती बिसन डारी, फूल शंकर देव, तीन देव प्रताख तो रह, करह किसकी सेव। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गढ़न हारे खाओ। पात पहत अरलापसी, कर करा का सार, भोगन हारे भोगया, इस मूर्त के मुख शार। मालिन भूली जग पुलाना, हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, कबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाओ। कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई। काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा। जम का डंड मूंड मह लागे किन मह करे निवेरा। हर जाने उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई। जो तिस भावे सत

आसा तम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन भावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाउ रोजा धरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा घट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

जराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो अस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले है पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बबरे तब की

तार चिरायु हो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सो मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जै पासना देख आग काल पासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे अब पुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करहै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

मेरो पेर हौ हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ। धन पेर एकै संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांति मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ लावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवे हैं। मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

मन सत सहंस जैसी पूत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फेन बुद बुदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काहे करूं।

अपना खसम त्यावो सोइने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे कोटी जै ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने।

आद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख बनास पंच दोख असाध जाम है ता की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

ऊच पय है। गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत सरन तुम्हारी, हम अवगन तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कहरवदास छूटे बो कमन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरी।

पे आया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुन बोले, दौर्यो फिरत है रहाउ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रास कसै लुभाना, बिन

धन्ने जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाकै, अशली प्रभ पहचानिया, धन्य धन पाया तरनी तर, मिल जन संत।

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओह कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मह गनिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड भागा रे चेत चेत सकी ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राखे ऐसा खसम हमारा।

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ें दी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया, कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया, सेख हयाती जागना कोई थिर रहिया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलिया, से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़िया, चले चलन हार बचारा ले मनो, गा डेंदियां छे माह तोड़ंदियां हिक खिनो, जिमी पुछ

पुजे वेद पढ़ मुख कंठ सवार ताको अंत न जाए लखना आवत जात रह गुबार प्रीतम क्यों बिसरह मेरे प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जाके त्रे पवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोहों लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेविय मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए हर सेती चित गहर है जरा का पौ न होवे जीवन पदवी पाए रहाउ गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोए जी हर की सेवा ते मनों चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चल जहां हूं जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

आहु वही वेखो को विपाय बलिहारी गुरे अपने सद बलिहार जाऊ सतगुर मिले हर मन वसे सहजी रह समाई रहाउ जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई बैरागे ते हर पाइये हर सिंह रह समाई से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई नानक गुर ते गुर होया

जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचों हउमै मारे, तां हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, जिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई, रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवे साच बुझाए, बिन पारस पूज ना हो वई, बिन मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए, नानक बिन नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए, गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजे, ता

आप ना पछाने सच ना तरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाउ सुख साग

आग को अमृत रस पाई तृप्त विष्टा खाए मुख गो है अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस हो है नानक धन तन वड्डे वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है गुजरी महला चौथा हर जानी उत्तम उत्तम बाणी मुख बोलह पारे उपकारी जो जन सुने सरदा भगत सेती।

मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगहा हर हर दे वडे आई धन पन सबास कह प्रभ जन को जन नानक मेन लय गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जां हर प्रभ पावे तां गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

था। जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ, वड भागी हर नाम ते।

तेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामै हर सिउ चित लावे अमृत बचन

नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक।

माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कहो संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ। भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उद्दम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरियाचार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

विचारी अठ सठ मज्जन कर इशनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायु अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी।

निध पाई, हाथ चरहु हर थूका, खावहु खर्चहु तूट न आवे, हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया, एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा, जिस सिमरत सब किल विखनासह पितरी हुए उदारू, सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू, पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाउ, सतगुर तुम कहो हुए दयाला संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा कबह न व्यापै चिंता, पवर तुम्हारा इहो मन होवो हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग।

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल ऊचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिख्या के बिंजन ता मह त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा मुहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

जतर कता गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कशु ना आयु जह जह अवसर आये बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर्म धर्म हर कीर्तन जा

कह संगे पेख मोहयो मन लीला रहाउ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरै मनहु जंगीला।

तेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखी परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदप तिनका बल है थूरा। अनक रंग माया के पेखे किस साथ न चाले पूरा। ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही। मैं आहे हो तुमरा तुरा रहा बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्स पायो बिनसे ओ सगल निहोरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई। मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस भेटे टूटह माया बंद। बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे है जोत तरी त्याई अपनो सदा हरी सोच अंदेसा ताका कहां करिए जा मह एक करी रहाओ तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तमारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुम राखो तार करी।

नानक रंग राती हर दास है पैज रखाइए गुजरी महला पंजवा विश्वंबर दियन को दाता।

सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै, गुर पूरे की वडियाई। अब चल

सर्व सुख कल्याण पावह, मिटै सगल उपाद रहाउ। मात पिता सुत मीत भाई, तिस बिना नहीं कोई। ईत ऊत जी नाल संगी, सर्ब रविया सोए। कोट जतन अपाव मिथ्या, कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला, गत होए प्रभ कै नाम। अगम दयाल प्रभु ऊचा, शरण साधु जोग।

अशेद अपेद स्वामी सरण ताकी आओ चरण कमल अराध हृदय एक स्यों लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ त्याया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण

महला पंजवां अहम बुद्ध बहु सघन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करन कारण जोग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्यासा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

भगत गोपाल सिमरन मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिलै हर जन संत सर्ब बिद भ्रमते पकार है कतह नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ की दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा घर चौथा दोपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर

मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मतंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाई गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाऊं कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ चरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरै ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

काम क्रोध अहंकार तदियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

चिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावै सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

लावै बिलमना अदुआराई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई है जी सदा दयाल दया कर रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात होई।

लाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मति गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमति नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पवजल मना चित लाए हर चरनी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरनी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरन गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पावै अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाई आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाइए जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी अलग।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहा।

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

पौड़ी अपना आप अपायन तदहो होर ना कोई मता मसूर ते आप करे जो करे सो होई तदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई ज्यों तिस भावै।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करी पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वार।

आई सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आई एहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहया समाई पौड़ी।

वसियो मन आए त्रिग अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आए माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाए जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आए हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो तन सौ।

आए तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए। नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी। अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा सबना का सहो एक है। सद ही रह हजूर नानक हुक्म ना मने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी जिनको नदर करे। हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए। महला तीजा रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। उपाय कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सरकार है इना ऊपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाईन जिन दूजा भाव प्यारा जमपुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले।

लपटाए गुर कै शब्द पर जालीए तां एह विचों जाए तन मन होवै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जां हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाई।

विरासत होगी। आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी, जो तिस भाव है सो करे, हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागिया वाह वाह मुंह कढ़ाई, वाह वाह करह से जन सोहने, तिन कौ परजा पूजन आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे, नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी, भरम भूले नदर ना आवनी। मन मुखियां दे अज्ञानी, उपाय कितै ना लभनी।

सात न जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हर रसना चखे हो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चाखिया से जान त्रिपताता। सलोक महला तीजा वाहो वाहो तिसनो आखी है ये सच्चा गहर गंभीर वाहो वाहो तिसनो आखी है।

दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लहिया निरपो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटिया तिथे सोग वजोग ना व्यापई अस्थिर जागतिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किसे आम।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास

पौड़ी नित जपिया सास ग्रास नाओ परवदगार दा जिसनो करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसै उधारदा जिस दै हुवै वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजै अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

तालुक महला पंजवा नदी तरंदड़ी मैंडा खोजना खुंबे मांझ मोहब्बत तेरी।

प्रभु सगल अपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम विघ्न

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

दुख जाए। भगत तेरे दयाल ऊना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए।

जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िए त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़िए भरम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखम दल खोड़िए हौ तिस अगै दिन रात रहां कर जोड़िए। सलोक महला पंजवां किलविक सभे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेचा उपजह नानक बिसरै नाओ। महला पंजवां नानक सतगुर भेटिऐ पूरी होवै जुगत हसंदिया खेलंदिया पै नंदिया खवंदिया विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाहो वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम निदान।

दुर्मत थोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरे रंग रत्ती से जोन ना जोवना।

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसह दयाल बुझाए हुक्म मित जिसह पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते सलोक महला पंजवा राम जपो हो वडभागी हो जल थल पूर्ण सोए नानक नाम त्याय बिघन न लागे कोई महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनों विसरै नाउ नानक अन दिन बिलप

प्रियाय आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यो अकाश पंखी अलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल

इन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद।

बेसवा जून वल वल अवतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै

प्रमाद कुरुख मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग वद अमृत तत्मयंग नाद नोत जसमरणे जन्म जराद मरण भयंग रहाउ इस जमाद परा भयंग जस स्वस्थ सोकृत कृतंग पाव पूत भाव समभ्यंग परमंग प्रसन्न मिदंग लुबाद दृष्ट पर ग्रहंग जद विद आचरणंग तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणंग हर भगत निज निह।

ठाकुर लिव लागे। जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे। रहाउ टूटे माया के बंधन फाहे, हर राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहयो गुरमोहन, हम बिसम भई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचत कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी, मोहे तुम सर अवर ना लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर, कहो मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली। रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे, यह चाल बनी है भली। लटुरी मधुरी ठाकुर पाई, ओह सुंदर हर ढोल मिली। एको प्रियो सखियां सब प्रिय की, जो भावे पेर सा भली। नानक गरीब क्या करे बेचारा, हर भावे तित राहे चली। देव गंधारी मेरे मन, मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलूलै राती, हर प्रेम पीनी चोली है। रहाव हों फिरों दीवानी, आवल बावल तिस कारण हर ढोली है। कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुल गोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी झोली है। गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देहे टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार,

अंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। जो आवत सरन ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक सरन तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी। हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकती, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है। तिस नाम परयो है तरक्ती रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी। ते बिगड़ रूप बेरक्ती, ज्यों नुगुरा बहु बातां जाने। ओह हर दरगाह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी। तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत। गुर सतगुर पातै शुक्ति छका एक, देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाई है।

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ अनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहु गावत सुनत जपत उधारै।

ज्यों अपने प्रभ भावो नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यों प्रीत कटावो ज्यों अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

तेरी सेवा दर्शन दुख उतारियो नाम जपत महा सुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

नाम रस माते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

ही पुर जायो इतनी ना बूझै कब हूँ चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर मान बेग तहा उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो।

हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनासे उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश हैं।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहो अनग्रहो स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ आदु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ तारो देव गंधारी महला।

काल रहाव, दुई कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्म मन त्याया, हाथ दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया, वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार, कहो नानक जन को बल जाइए।

काल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंदेसरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया

पाए, छोड न जाए सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग न कतहु जाए, अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माणी, ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

जिस आराधी जो दिसकै सो गाखै साध संगत की सरनी परिय चरण रीन मन बाचै जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुतर माए आचै आए पयो नानक गुर चरण तो उतरी सगल दुराचै देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोहन

ताकत संग ना छुटकी रे रहाउ। जो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू कीरे, दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा।

साध पगा हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हम बल बल जाओ।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै। कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै। स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान धरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नवा, सब किस जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप, हर खुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार। आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं झूठी।

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किलिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाचहारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक को करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

तेरा मन चिंदेड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज सुपाए राम जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए अनहत शब्द बजाए राम सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आन मलावै राम हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदेड़ा फल पावै राम नानक भज हर शरनागति मेरी जिंदड़िए वडभागी नाम त्यावै राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए गुरमत नाम परगासे राम हौ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए ज्यों जल बिन कमल उदासे राम गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम, हर बिन चात ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम, जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम, अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम, पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए, चहो कुंडी चहो जुग जाते राम, हौमै मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर तरनाते राम, अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम, बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिया।

गुण गावे हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजी है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे।

सहस सियाणप नह मिलह मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम छका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

भाइयों, हर हर नाम अराधे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईए, जिनको बधाते तुरहु लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिव लाईए, हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जा संग मिलिया साधे, जन कह नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अरादे, कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भगे है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपे है, हर नार सुहागने सब रंग माणी, रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बडभागिया, सुख सहज सोवे है, किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच्छ पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरन आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

पंजवां खोजत संत फिरह प्रभ प्राण अधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलहु प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिए देह नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्श पेखे दीजिए समरथ पूर्ण सदा निकल ऊच अगम अपारे।

0: तपत ना कत है बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। समरथ कारण करना नानक चातर कहर बूंद।

संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमुख मन होना बीसर आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन।

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारे बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे बिहागरा महला।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहस करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन भ्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दुख कर कर जोरी नानक।

कलतरना संग सोभा हस्त घोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन, सर्वतर घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो, सेवक सियाने राम, सरपर विचड़ना, मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला, कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गवाई है।

तार अनग्रहो अपना कर ली नाराम पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण परवीना।

चार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हट क्या गुण गाय। नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाण मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए। सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित

पाए, गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए, नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी, जिस दै चित वसया मेरा स्वामी, तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है, हर सुख दाता सबना गल्लां का, तिसनो त्याए दिया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है, जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है, सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़िए, हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे, जगत तरिया सब लोड़िए। सलोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाम वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुभाए।

कहो बलिहार है जाओ महला तीजा। नानक तरवर एक फल दुए पंखेरू आहे, आवत जातना दी सही ना पर पंखी ताहे। बहुरंगी रस भोगिया शब्द रह निर्वाण, हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान। पौड़ी आपे धरती आपे है राहत, आप जमाए पिसावे आप पकावे, आप भांडे दे परोसे आपे ही बह खावे। आपे जल आपे दे शिंगा, आपे चुली परावे आपे संगत सद बहाले, आपे विदा करावे। जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावे। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध, ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद। जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

आई बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञान अंधेरा जाई सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज

0: ना पाई हन दिन रह सदा गुण गाय बिन कर्म किने ना पायु
1: भौंक मोए बिल लाय
0: गुर कै शब्द मन तन भिजे आप वसै मन आई नानक नदरी पाई है आपे लय मलाई पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भीजे आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजे आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथीजे आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजे
1: आपे सुख दुख देवे करता
0: आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा सीखा अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम करो।

तीजा सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाईए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए हौ मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाईए सच्चे रह समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होए सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

थै पर बुझे सब आपे, एक थै आपे करे इयाने, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वडियाई, से जन सच्ची दरगह जाने। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, थादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पीलाए जमकाल, हित मद पीते नानका, बहुते खटी है बेकार। ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार। काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कटह बेकार। पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

तृप्त भई हऊ तिन बलिहारे जाऊ। मैं की नजर न आव ही वसह हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों दादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ।

पिछड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरियां बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

सतगुरु मलाया पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहा। ब्रह्म वेद बाणी परगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने तामस बहुत अहंकारा।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहे आसमाय। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वडहंस महला पंजवां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नाही किश पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावै, एक तिल ताका महल ना पावे, सहावी कौन सो वेला, जित प्रभ मेला रहाव, लाख भगत जाको अराध है, लाख तपीसर तप ही साध है, लाख

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभु दाते जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल थल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

पंजवा साध संग हर अमृत पीजै ना जियो मरै ना कबहू सीजै वडभागी गुर पूरा पाइय गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ भय निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना।

तिस बिन रह ना सका, ज्यों चातरक जल को बिन लाता। हौ क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा। इह कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हौ वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाय। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण, सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देख, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तमै लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ पिया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड़।

की ताला स्वर्ण ताला कृष्ण माला जप हो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया

नारे सत्या शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सत्या पाए प्यारी कंत सवारी हार हर त्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन।

राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे आपर पूरे राम फिर रव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर भावै।

ब्राह्मण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुपाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिंगार बनाया हों मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाई हर वर राव है सदा मुइये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोबन बाला अन दिन कंत सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडहंस महला तीजा गुरमुख सब वापार भला जे सहजे की जय राम अन दिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम ध्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो।

खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम। उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया। मन मुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा। खोटे खरे परखियन तित सच्चै दरबारा राम। आप करे किस आखी है होर करना किछु ना जाई राम। जित भावै तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसती कोई। जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई। गुर प्रसादी आप गवाई नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखी है होर करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीयै पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हूं मैं मैल परिजै, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पंडा।

सत्या बक्षलय, फिर हुए ना फेरा राम, फिर हुए ना फेरा अंत सच नबेड़ा, गुरमुख मिले वड़ियाई, साचे रंग राते सहजे माते, सहजे रही समाई, सच्चा मन पाया सच वसाया,

टेवा लागे से वडभागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पहा।

देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख परम पौ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हरे आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई वडहंस महला चौथा हौ गुर बिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हौ ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुर बिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया

वह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सुवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर

चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बनासे, सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास ग्रासे, जिनको हर प्रभ कृपा धारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूं घणी नानक से अखड़िया बेअन्न।

से परधान्य हर से तीरंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणी कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन का

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

ऊठ विदनिया मृत कड़ा अंग नड़े बारी तुरत मुई मर माइये महल रुनी दरबारी रोब हो कंत मेहली हो सच्चे के गुण सारी जल मल जानी नवा लिया कप्पड़ पट अंबारी वाजे वजे सकी बाणिया पांच मुए मन मारी जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारी जीवत मरै सो जानिए फिर सचड़ै हेत प्यारी तुसी रोवो हो रोवण आई हो झूठ मुठी संसारी हो मुठड़ी धंदै धामणिया फिर छोटियाड़ी विदनकारी घर घर कंत महेलिया रूढ़ै हेत प्यारी मैं फिर सच सलाहना हौ रहस्यड़ी नाम पतारी गुर मिलिया वेस पलटिया सा धन सच सिंगारू आव हो मिलहो सहेली हो सिमर हो सिरजनहारू बैयर नाम सुहागनी सच सवार नहारू गाव हो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म बीचारू वडहंस महला पहला जिन जग सिरज समाया तो साहिब कुदरत जानोआ सचड़ा दूर ना भाली है घट घट शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाण हो दूर ना जाण हो जिन एह रचना राची नाम त्याए ता सुख पाए बिन नावे पिड़ काची जिन थापी बिद जाने सोई क्या को कह वखाणो जिन जग थाप बताया जालू सो साहिब परवाणु बाबा आया है उठ चलना

हारेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखे नानक सहज सुपहाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

समाए, जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप उपायन, आवन जान संसारा, माया मोह खुआयन।

जन्म गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी। फिर जग जीवन किसनो रोइए रोवे कंत वसारे सब जग आप उपाय आवन जान संसारी। सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाय रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए। आप कटै तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए। सो

पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले, फिर अंतर संभाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे, इहो तन रुलै रलाया काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सा धन मिले मलाई, फिर अंतर सदा संभाले, फिकरो वह पिरह विछुनिया।

आओ पौड़ी, तू आपे ही आप आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर ना भी।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट काम ना आवे रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

दुख मनाय। इस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाय। शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भुलाय। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक जो तिस भावै।

मूल न हो गई अचिंत वत्सय मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सारे तीर्थ न आए सज्जन मिले सज्जना सच्चे शब्द सुपहाय।

नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिंह निभ लाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जिते हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम लेहो हर तत् ना खोई है नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविय शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवै नाम मन वसै विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवै तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिलै वडियाई।

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायत रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही।

सुहणे गुर का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सोभा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सह

हर नाम सखाई मित्र हमारा, हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसलक, हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया, हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। श्लोक महला तीजा, जिन कौ सतगुर भेटिया, ते हर कीर्त सदा कमाहे, चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया, सच्चै शब्द समाहे, कुल उधार है अपना, मोख पदवी आपे पाहे, पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया, जो गुर चरणी जन पाहे, जन नानक हर का दास है, कर कृपा हर लाज रखाई। महला तीजा, हम मैं अंदर खड़क है, खड़के खड़क विहाई, हम मैं वड्डा रोग है, मर जमे आवे जाय, जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आई, नानक गुर प्रसादी उभरी, हम मैं शब्द जलाए पौड़ी, हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर, अविनाशी पुरख विधाता, हर नाम हम सिरेव है, हर नाम हम पूज्य है, हर नामे ही मन राता, हर नामे जेवड़ कोई अवर ना सूजै, हर नामो अंत छडाता, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, तन तन गुरु का पिता माता।

वार मनमुख अंध ना चेतई हित आया सहसार नानक जिनको नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवै होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज हर

हर रतन है मुक्त करावन हारा। नानक जिसनो नदर करे सो पाई, सो हुए दर सचियारा पौड़ी। तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरनी जाए पया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया। तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाण गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हठ किने ना पायो। सब थके कर्म कमाए, मन हठ भेख कर भरम दे। दुख

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिन विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा। सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार। हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार। नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार। महला तीजा। सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार दूजे भाए।

0: मिटै, मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सकै,
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई, निर्भउ निरंकार निर्वैर, पूर्ण ज्योत समाई। नानक गुरविण भरम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोट महला पहला दुतुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंत चौबारा, सगल भवन की।

तिहारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ नरारे, बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। सोठ महला पहला, जिस जल निद कारण तुम जागे आए। सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो हो वेस भेख चतराई। दुबदा इहो फल नाही जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे है,

कियो, हर अफसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावो हो काही जियो। निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाईए।

की नजर तुम्हारी, अपने दासा नू कृपा कर प्यारी, राखो हो पैज हमारी रहाओ, शब्द सलाही सदा हों जीवा, गुरमती भव भागा, मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यू।

पाया, पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया, हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुरु विचारा, हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा, नानक नाम रता इक रंगी, शब्द सवारन हारा, सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी, जिचर घाट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटोह वारिया सदही, तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ, हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहे आसमाई, शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा, हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी, मान मुख मुग्द गोबारा, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै भाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर भाई, अवर ना दूजा कोई,

आप राखह जो तेरे मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंतकाल तेरा बेली होवे सदा लिब है तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझह विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मन मुख मत ना।

अंत गए पछताए, सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए, शब्दे राते सहजे माते, अनदिन हर गुण गाए, नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए, सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई, जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई, फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ, यो कटंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही, गुरमुख मोख द्वारा, कर्म करह गुर शब्द ना पछाण है, मर जन्म है वारु वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई, कोई ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज घर होए बसेरा, एथे बूझे सो आप पछाणे, हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसे मन अंतर, विचों आप गवाईए, सोठ महला तीजा चौथुके, सच्ची भगत

सरनाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हिरदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठाई हिरदय नाम अपारा जुग जुग पाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जाग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझै गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवै सो मग पजाणै हर रस रसन रसाई जप तप संयम सब गुरते होवै हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है सेजन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिलै उल्टी पई पाई जीवत मरै ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागै पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाउ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईऐ पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरे मन वसै भाई सदा हर के गुण गाय रहाउ नामै ते सब उपजे भाई नाए विसरिए मर जाए अज्ञानी जगत अंध है भाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे भाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है भाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे भाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा भाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

कमावह। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री। बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वडभागी। जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे। विचों आप गवाई इहो जग अंधा सब अंध कमावे। बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे। करे अंदर सच पाई सोठ महला तीजा। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते। शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे।

मन निर्मल हुआ, गिलबिक काटन हारा, शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस दे, नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जाप है से, सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वस्या,

चौथा पद कीन्है राम नाम सुख होई त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करह सो होई नानक राम नाम निस्तारा शब्दे हौं मैं खोई सोठ महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप वरतदा प्यारा आपे आप अपाह बनजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहू आपे बणज व्यापारिया।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्शमला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमणिया

कर दया अमृत मुख चोए रहाउ। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सबना रिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरे मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप।

आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर बहुड़ ना आवन जान रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बख्श कराईंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वरतदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई। मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़ियाई।

पाल हुआ प्रभ मेरा, थे लागे गुर की बाणी, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला,

जल कूकर पसमे ही होए आमरो ग्रह मह बैठा करण कारण बिसरोही अनक भांत करमणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत बापरे फिर पाछे पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारी तिस त्याग हो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही सोट महला पंजवा गुर पूरा पेट्यो वड भागी मन है भया परगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सह।

तरी पढ़िया ता कहो सर्ब परगासा अज्ञान अंधेर है सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक इहो सुख मांगे गह कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे सोठ महला पंजवां तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थी।

कोट पराध मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई इहां सुख आगे मुख उज्जल, जन का संग वडभागी पाई है, रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है, अगम अगोचर सद अविनाशी, सरण संतन की लही है, निर्गुण नीच अनाथ पराधी, ओट संतन की आही, बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में, नानक लेहो निवाही, सोठ महला पंजवा कर पहला, जा कै हिरदय वसया तू करते, ताकी तैं आस पुजाई, दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई, सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जाको तुदे आप बुझाई, गुर प्रसाद मिटेओ अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई, सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई, कहो नानक जिस भय दयाला, ताको मन ते बिसर ना जाई, सोठ महला पंजवा, सगल समगरी

आद शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे, फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो परम पलावा कहियत, तिन मह उर्जियो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात, एहो खसम का किया, जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाउ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना करत उदारा, कहो नानक गुर बिन नहीं तरिये, एहो पूरन तत बिचारा, सोठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचारे, राम नाम तत सारा, किल बिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बाणी रहाओ, मुकत भुगत जुगत सच पाईए, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता, सरवणी सुनिए रसना गाईए, हृदय त्याईए सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई, वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

जोगे अंतर गुर नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

पाई एहो मन तेरा पाई रहाऊ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो बेवहारा संतन स्यो हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे तू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

मन तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर बिद जाने, ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी पार।

मेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहा सुख आगे मुखी उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ पए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवरदा।

अब हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थानी जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपनी जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया।

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हूं मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थल रमैया आहयो रहाउ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन जी अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए दीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पय दयाला, जय जयकार पय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोठ महला पंजवा मेरा

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया। उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद भेटे।

सारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याइये आन दिन सो कृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़।

जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर।

प्रभ त्याई हर मंगल नानक गाइए सोरठ महला पंजवां सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रस

रखवाला कर कृपा अपनी कर राखी मात पिता ज्यों पाला रहाऊ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

कार्य सगल सवारी रहाउ मिन साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरो

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ घटा घट दामन चमक डरायो तेज अकेली नींद नह नैन है फिर परदेस सदायो।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चढ़ के पंथ निहारों नैन नीर भर आयो हौ हौ पीत भयो है बीचो सुनत दे।

तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ। जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावे, कार्य उपदेश छिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अव कद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

आप प्रभु स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संतां तूड़ी।

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे सुख गुर

ते आया ता सगले दुख मिटाया चोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई रहाओ जो मंग है सो ले वह प्रभ अपने संता देव है हर गोविंद प्रभ राखिया घन नानक साच सुभाखिया।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्स समावे, नानक दास सच्चे गुण गावे, सोठ महला पंजवां।

सो प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई कार्य सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया।

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रावर।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

ता जो शिवर है तिसकी गत हुए उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहो पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

संत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजी, सगले दुख मिटाया, रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी, चौथ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाई है।

जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहा तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की बेनंती प्रभ जी।

तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी

गत सिमर माधु होहे पतत पनीत काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो।

सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोठ महला नवा मन रे कौन कमात तै लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तैं खोजत उदयाना बहुत जन्म परमत तैं हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नवा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जिहे सिमरत गनकासी उदरी तां को जस उरतारो रहाओ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निध

पवन न्याय सोठ महला नौवा माई मह के बिद लखो गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मो मन रहयो पुरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहयो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध

को तावत केहे बिदरू कौ ताही रहाउ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावै। पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना। घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी। सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही एह सुख माया के उर्जे हो कहां गवार। अज हूं

पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग शाड सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीनानाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठह लागे जन्मे अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग पौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

बिंद सुखवासी नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूझी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नाम मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मन मुख झूठ लह पैमान।

क्या कथिया भाई, चालो सदार जाई। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक परम पला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होए अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाओ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पथ खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोह रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर घर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाई है भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूढ़ है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई।

भाई मिल प्रीतम साच समाओ एत जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुह देसी जाय किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्या नो लो भाई नाम समाल है सुख वसह भाई सदा सुख।

पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करन कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावण हार सच्चे चरण सरेवी है पाई भ्रम पौ होवै नास मिल संत सभा मन मांजी है पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिया चूर करन करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल ले पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई ऐनस लागा पाव रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआव करनी सुन सुन जीविया पाई निश्चल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जियड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिबै पाई हाँ तिसकै बल जाओ ओ निर्गुण आरे पालदा पाई देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाव तिस बिन घड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै पाई पेखों सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई भौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई कीतोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी।

अवरना करना हार प्यारी अंतर जामी एक रहाव कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिए प्यारी जो साची सरना।

तिसते उपजिया सोगा भोग पुंछाए पुलायन प्यारी उतरै नहीं बजोगा जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवै मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत सांगना कीजे प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारी सो मोह काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाए जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिन्ना पूरी पाए संजम सहस सियान पां प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवै प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भवजल पार परे जिस भावै तिस मेल लह प्यारी सेई सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पोंगम साधे पंच जना स्यो संग ना छुटकियो अधिक हम बुद बादे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विद दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंड होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया, नह मिलिए एह जुगता, जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए पी कर कर रहया, वड़ी आर जा फिर जन्मे, हर सिंह संग ना गया, राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अखारा, सेज सोनी चंदन चोआ, नरक घोर।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन

आया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिर जन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मह जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफलियो सतगुर।

फुरमाइए हों गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेते हो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना

आस नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना जे गुरमुख मिल है सुपाय सतगुर का पाना अन दिन कर है से सच रहे समाय दूजे पाए लगे सजन ना आखी है जे अभमान कर है वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया, तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है।

वीरता जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सोहर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुरपूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना भोरी दे जियो वंजे चौखनिए। सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाइंदा। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हौ मैं बिचों जाए, बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना हौ तिन बलिहार जाओ। महला तीजा, मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके अठ अठ तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी हौ मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भौ पया वडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ हौ मैं शब्द जलाए। सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फिरे से पत्ते दुख सहाय।

नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाव ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाव नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया ते दरगाह पैंदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ती है पाईऐ मोख द्वार इहो भोजन अलब है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखियै उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी भाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को

हुआ मनमुख पर मैं सहसा हुआ अंतर चिंता नींद ना सोए ज्ञानी जाग है सब है सुपाए नानक नाम रतिया बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सठ कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आय जित किस सोजी पाय ऋण जिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाय नानक शब्द पछाणी है।

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावे जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावे हर गुरमुख नाम अराद कूड़ पाप लह जावे सलोक महला तीजा सेखा चौ चक्या चौ आया एह मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगै तै पौ सब किस जाने जान आसा मन सा जलाए तू।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवे हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भउ करे।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाई पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाय पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना तन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोहे द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चे शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चे नाए प्यार नानक नाम रते सहजे रजे

आई, अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध ना काई पाए, मन हठ सहज ना बीजेउ, भुखा के अगे खाए, नाम निदान वसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी, श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है, जा आपे नदर करे महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी, गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुरु बोल

चेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारी है फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूका आवन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चित हर नाम स्यों अंत होए सखाई। जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी तां गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोल है हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है

पिछै सुख नहीं, मर जम्मह वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चिते एक अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभ आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कु महल ना

जिस गुरमुख नामे आधार महला तीजा विन मन मारे कोहे ना सिजे वेखो को लिवलाय पेख तारी तीरथ भव थके ना इहो मन मारे आ जाय गुरमुख इहो मन जीवत मरे सच रह लिवलाय नानक इस मन की मल इउं उतरे हमें शब्द जलाए पौड़ी हर हर संत मिलो मेरे भाई हर नाम बिरडावहो एक किनका हर हर श्रृंगार बनावहो हर जन हर कापड़ पहरो खिमका ऐसा श्रृंगार मेरे प्रभ पावे हर लागे प्यारा प्रेम का हर हर नाम बोलो दिन राती सब किल बिख काटे एक पलका हर हर दयाल हुए जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका सलोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह खनली धोती उजली ना होवे जे सौ धोवन पाह गुर प्रसादी जीवत मरे उल्टी होवे।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरे से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारे तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाए जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

आई हर सेती मन राव रहया सच्चे रहे आसमाय नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार साक सुध साक लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैण सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कै वस है ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे कर प्रीतम स्यों नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई सतगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई पौड़ी रहन दिन सप्रभात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान, भोजन खाया संत जना की धूर मस्तक लाया। नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। सलोक

यह नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नाम पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बताते हो रखवाले गुर दिते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रते गुर किरपाल बेअन अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला ता की रजाए लिखिया पाए अब क्या की जय पांडे।

तेन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए,

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

या तन की यह बड़ाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया देहुरी नौ बरी नार संग पई आगे सजन सोहेला मरखट लो सब लोग कटंब पयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नरनी भ्रम सुआ वेद प्राण सब मत सुनकै करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निरासा मन रे सरयो ना एक काजा भजियो ना

जाई हमरा धर्म गया पहु भागा जब राम नाम चित लागा रहाऊ बाजीगर डंक बजाई सब

तुम राम न करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर मैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाऊ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया

सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो धन पाया, हर भेतत आप मिटाया। क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा, रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई।

क्या कीजै, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बलो वस पानी, काया मांजस कौन गुना, जो घट पीतर है मलना, रहाउ लौकी अठसठ तीरथ नाही।

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उभा करिया।

तह अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

लंकप भीखण आप्यो हो सोरठ घर तीजा अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाजै बाज

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीर सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूतन को जतन करो

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेखै ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम भये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

बेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एह औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मोख द्वारा ऐसा नाम रतन निर्मूलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हिरदय राखिया रतन ना छपै छपाया।

नदर करे तुद बाज प्यारे केवरहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिसे आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहिब अपना।

काती कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चमरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन।

तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो, अन दिनों मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिं को, होए जाते तेरे नाम वासा। तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एहो तन अखोट नान फुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा ते हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन परगासिया।

पाए पूरे गुर की साची बाणी सुख माने अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो पाई दुबदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए सब मह वसै प्रभ एको सोए गुरमति घट प्रगट होए सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिलै मन मानिया तनासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अत अपारा गुर कै शब्द भरे भंडारा नाम तन बिन होर सब बिख जान माया मोहे जलै अभमान गुरमुख हर रस चाखै कोई।

जन निर्मल होए, अंतर नाम बसै पात उत्तम होए। रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई। भगत करे जन वडियाई पाए, काच रखे सुख सहज समाए।

कूड़ को सात तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर छात सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी,

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा, गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरे ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत सा।

सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए ते जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख।

बहुत अभमान अहंकार डूबे न पावे मान ताप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीख कपे खारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हों बलिहार है जा।

फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुटकाकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

राम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इउं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तीना, सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

गायो भयो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा भई प्राप्त वस।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल कर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्ही त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

ना जाई। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जाको दया करी मेरे ठाकुर, इन गुरु

माया मोह भूलो अवरहित। हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देखो सुख गर्धब भस्म संगीत। अमृत संग

केल वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन ने तर दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवा पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारै

कृपा निध पतत पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाए जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए।

दी थी। ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुर अपने, जिन ओह चलत दिखाया। गुजी पाहे जले संसारा, भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाते। तनासरी महला पंजवां, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

निर्मोल का हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन।

ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही हो देव हर पौ अपनो चीत रहाओ पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन

हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आराधी नानक सद कुर्बान राग तना श्री मां।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा।

जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

एकत्तर तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम हुन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

जा की रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

अंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करह करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किने ना दुत्तर पाखे।

किस स्यों ना लाया हीत, जाको किस ना ही बीत, अंत की बार ओह संग ना चाले, मन तन तू अराद, हर के प्रीतम साद, जा कै संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म सरन, हृदय कमल चरण, अवर आस कस पटल ना कीजे, सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा कीजे, तनासरी महला।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल क्लेश लोभ मोह महा पौजल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रख।

टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जल पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का

कर आई। संत अनुग्रह पए मन निर्मल नानक हर गुण गाई। तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिनै सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइय।

सब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवां, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, ताका जुग मह धर्मा।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी। राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी। मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भावनिद पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहूं जात। सतगुर पूरै कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को भई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी रहाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बक।

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाऊ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोय ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां कर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा कर तारु हो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाउ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन न राख नहारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह। सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई। तनासरी महला पंजवा तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ, पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई, बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई, तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ, मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना, तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ, पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो, चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नार, मुक्त ताहे तुम मानो, तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निद पार परों रहाओ, जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो, तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरसागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ, रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सर्वर मह हंस, हंस मह सागर,

आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हौ मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताए मरन लखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म धरनी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया परवान ना तिस मरण ना आमन जान ठाकुर मह दास दास मह सोए जह देखा तह अवर ना कोई गुरमुख भगत सहज घर पाईए बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन में

साखी है, सच गुर की साखी अमृत भाखी। तित मन मानिया मेरा, पूज करह आवह बेखला दे। शब्द सच्चा गुर मेरा, आखण तोट ना भगत पंडारी। भरपुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती। मन मांजै सच सोई, तनासरी महला पहला। जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो। साचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपार।

निर्लेख है, आपे सुरत बुझाई, नानक साहेब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई, तुम सारे अवर ना कोए, आया जायसी जियो, हुक्मी होए नबेड़, परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाना, आप अपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाणा, सच्ची वडियाई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवर ना दूजा, नाम तेरे वडियाई, तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो, एक साहिब दोए राह, बाद वदंदिया जियो, दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बेखलादी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब शब्द सियापे, साचा सिर जनहारा, भगत सोह है दरबार, शब्द सुहाया जियो, बोल है अमृत बाण, रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तसाए, गुर कै शब्द विकाणे, पारस परसे है पारस होए, जां तेरे मन पाणे, अमरा पद पाया आप गवाया, बिरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहन दर साचे, साचे के वापारी, भूख प्यासो आत, क्यों दर जाए साजियो, सतगुर पूछो जाए, नाम त्याए साजियो, सच नाम त्याई साच चवाई, गुरमुख साच पछाणा, दीना नाथ दयाल निरंजन, अन दिन नाम बखाणा, करनी कार तुरों फरमाई, आप मुआ मन मारी, नानक नाम महा रस मीठा, कृष्णा नाम निवारी, तनासरी संत महला पहला, फिर संग मूठड़िए, खबर ना पाया जियो, मस्तक लिखियड़ा लेख, पुरब कमाया जियो, लेख ना मिटई पुरब कमाया, क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राते, अवगुण बह बह रोसी, तन जोबन आक की छाया, गिरध भये दिन पुनिया, नानक नाम बिना दोहागण, छूटी झूठ विछुनिया, बूढ़ी घर गालियो, गुर कै पाए चलो, साचा नाम त्याए पावह सुख महलो, हर नाम त्याए तां सुख पाए, पी अड़ै दिन चारे, निज कर जाए बह सच पाए, अन बिन नाल प्यारे, बिन भगती घर वासना होवी, सुनहो लोक सबाए, नानक सरसी तां फिर पाए, राती साचै नाए, फिर तन भावै तां फिर भावै नारी जियो, रंग प्रीतम राती, गुर कै शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी नाह प्यारी, निव निव भगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम, रस मह रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती, लाल भई मन मारी, नानक साच वसी सुहागण, फिर स्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सोहै नार, जे फिर भावे जियो, झूठै वैण चल

बिना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह निब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जागे अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो माया दुख मोहिया।

अंत गया पछतावै बिन नावै को साथ न चालै पुत्र कलत्र माया धोया दूजे भाई दुख होए मनमुख जम जोहया जियो कर किरपा ले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आन दिन जपत रह दिन राती सहजी नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिट नाम सत्तर दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाछे बहुर ना आवन पावो अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है सीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाइए कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो एह संजम हर पाइय मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो करंक निसनाद बालहा।

आऊ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै, हौ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पा

दारु कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरुण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रे पवन नाथ री तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत।

तहाउ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जान

चौथा जैत श्री महला चौथा हीरा लाल अमूल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन नीके हर साध

तुम वड़ अगम वड़ पुरखा जन नानक हर कृपा धारी पाखान डुबत हर राखा जैत श्री महला चौथा हम बारिक कछु न जान है गत मेत तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा धार दी।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही हर मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया भुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिस हर काढ़।

ताकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिउ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तने अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करहु गुर मेलहु,

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमा हाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाह, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सत्संग।

आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथ तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जप हो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहा।

था मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहा जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

सब महियो वर्ण ना दिसै चिहन ना लखियै सुहागन सांत बुझहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मन गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसिया।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला।

बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई जिनकै संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवां गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाउ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो ते बंदन।

या रसम है मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में किरपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रिय।

लाड़दास जन अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रयह बे सखिया मुँह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किस निशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौ किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन का कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी भज सरन स्वामी सुखागामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नान

मान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया। किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया। उदम करह अनेक, हर नाम ना गावही। पर मह जोन असंक, मर जन्म है आवही। पशु पंखी सैल तरवर, गणक कशु ना आवे। बीज बोवस भोग भोग है, किया अपना पावे। रतन जन्म हर अंत जुए, प्रभु आप ना पावही। बिनवंत नानक पर मह परमाए, खिन एक टिकन ना पावही। जोबन गया बेतीत, जर मल बैठिया। कर कंप है सिर डोल, नैन ना डीठिया। नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया। कहया ना मन है सिर खाक शान है, जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूर्ण, नह निमख मन मह वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर, बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रब आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए, अवर कछ ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया।

ताप अथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो कोह तड़ै थाए। नानक सो तनी क्यों वसारियो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निमिया अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। खंडन कल कलेश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यों लाइए नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटंब जतन करनं, माया अनेक उदम है, हर

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हब्बे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

का बसंत स्वर्ग लोक का है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतक कोड तमाशिया चेतना आवस नाव, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक।

गुरपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुर देव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह एक सेवी एक समला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचया

कई है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्त।

आदि संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी रहाउ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जन है नहीं निकटानी, निरपो हुए रहे लिव एक, नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां ब्यापै, जाको ओट तोहारी रहाउ। बिन सिमरन जो जीवन बलना,

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसेओ पेख रंग कुसुंभ को परग्रह जोहन जायो करण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछ राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन सरम कीनो इकत्र

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसो हृदय हर नीत। तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो। महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो। जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर।

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन भीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे

तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायो गुरमो को।

सब किस किस के ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा कर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़े, गाली हर नीह ना होए रहाव, हौं टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा, गुरमिल परम गवाया ही, एहे बुद्ध पाई मैं साधु कन्हो, लेख लिखियो तुर माथे, एहे बिद नानक हर नैन अलोई, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहिल।

मोहे हर रंग भीन, पेखियो लालन पाठ बीच खोए, अनद चिता हरखे पतीन, तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट घाट तुसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया।

बिसर नहीं निम कही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान। आठ पहर रसना गुन गावे जस पूर अगावे समर।

हजूर जो तुमरा जस गावह करते से गन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के।

रंजन करते मानतानते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये।

शल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ, गुण गावत अचुत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपूरा भेटियो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गए।

है, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाव, कोट जन्म के किल विख नास है, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत

सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम।

हरि आपी पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहू सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहू सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

का व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किसकी।

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चो बखील गाफिल बे नजर बे बाक नानक बुब

दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तो दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होए तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक तिन दर पीछिया पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

घर तीजा करते कुदरते मुस्ताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ हिन माहे थाप उथापदा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू, तेरे जन देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

उस तत है जो हर प्रभ भावै जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावै जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जी प्रभ नाली ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया वे आप छुटे परवार सिउ सब जगत छडाया गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेवंदी से पुन पराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया हर दरगाह पैनाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम ते आएंदे

खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेतेओ जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय उरतारिये तिन जम नेड़ ना आवी गुर सिख गुर प्यारी।

संपत रथ धन राज सिउ अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

आई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ये जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाहे असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल कर

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

रहाउ कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियाह टटियां कामना आवनी विचों सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांजव सन कोट कोट जिया खावने बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलान से फल कामना आवनी ते गुण मैं तन हन अंदले।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंघ वेहला ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला रहा साजन चले प्यारिया क्यों मेला हुई जे गुण हो।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजै तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुला।

हर हर करह नित कपट कमावह, हिरदा शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेले हर पाई सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए हर रंग राता मन रंग माणी सदा आनंद रह दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ हर रंग को लोचै सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मनमुख मुग्ध नर कोरा होई जिसो लोचै रंग ना होवै कोई नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सूही महला चौथा जिहवा हर रस रही अगाय गुरमुख पीवै सहज समाय हर रस जन चाखो हो जे भाई तौ कत अनत साद लुभाई रहाउ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मरार मनमुख हर रस चाखिया ना जाय हौ मैं करै बहुती मिलै सजाय नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस।

किसन उतरिया घर जिस जाई, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करी, हर कीरत निमख एक गाय, पतत जात उत्तम भया, चार वर्ण पए पग आय, नाम दे प्रीत लगी हर सेती,

मुख अठसठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर अरादिया जिनको तुर लिखिया लिख

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

मिट दे, उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह

साकार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त पये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ इकना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करह से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका।

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत हुई। सूही महला पंजवां, कीता लोड़ है सो प्रभ होई, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की

आई जिसनो लाए लए सो लागे ज्ञान रतन अंतरत सजागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे तायाण है रास कर कृपा अपनी भगती लाई जन नानक प्रभु सदा त्याई सूही महला पंजवां तन सुहागन जो प्रभु

आवे सास सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रहण बिहावे कर्महीन मनमुख दुख पावे बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अब नासी।

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया सूही महला पंजवां उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता धन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो धन मतवंता धन जागै जे पिर बोलंता पई नरासी बहुत दिन लागे देश दसंतर मैं सगले जागे खिन रहन ना पावो बिन पग पागे हुए कृपाल प्रभ मिलह सुभागे पयो कृपाल सतसंग मलाया बूझी तपत करह पिर पाया सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया कहो नानक गुर भरम चकाया जह देखा तह पिर है पाई।

कह तू महनी निकट ना आवे, अतीत सदाई माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय, कुचल

शाम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल बैठा।

सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जै, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाई जो हो रे ना जिसे।

काची देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त कौ जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बा।

किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्श।

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पीखो हर संग सहाय। जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सूख सहज आनंद विश्राम रहाव। पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही। हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी। सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा। आनंद बनोद मंगल।

पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभु चरण कमल रे दमाही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाउ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साद ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छड़ाई लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो।

सुख माना नानक दीवन हार सुजाना सूही महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दू कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत परन पोखन संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपुरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता

दास हर सेती राते, राम रसायण अन बिन माते, बाहा पकर प्रभ आपे काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी, नानक दास हर सरन द्वारी, सूही महला पंजवा, संत प्रसाद निश्चल घर पाया, सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया, गुरु त्याए हर चरण मन चीने, ताते करता असथर कीने रहाउ, गुण गावत अचुत अबनासी, ताते काटी जम की फासी।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई।

आद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा पाई लीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

सुखी ताकै पाछै जाऊं छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

सरनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महा दुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवां कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेना।

हार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

जित तुद त्याई निर्मल हुआ देहा मेरे राम हौ सो थान पालने आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाऊ वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित छूट संत हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल में है मैल प्रिये। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहु वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपे उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ। कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर स्यों आण मिलावे। माया मोह परम पहु काटे, संत सरण जो आवे। जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावे। जन की महिमा केतक बरनऊ,

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सीओ तब क्या करता कमन कर्म करया।

चरण धूड तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटै कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर अराद है तेरी शरण तेरे परवासै पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई नाम है रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई।

अब निद पाई अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गैले हो प्रीतम प्रबराया भणत नानक सहो है पी होसी जय पावै प्यारा तैर वेसी सूही महला पहला कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़ड़िया दिन चार जी हो विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हम मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है

देही होवग खाक पमन उड़ाई है। एहो कितै घर औताक महल ना पाई है। देहो दीवी अंध कोर कप महाई है। गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दी पाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है। सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है। जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ। जह देखो तह नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही।

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाए, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, भिख बीजे भिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल,

जो मर खाक थी। वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन, तिसना भूख न उतरे अन दिन जलत फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब सियो सगले कुल डोबन। निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुग्ध करन, मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। ए मन जैसा सेवह तैसा होवह, तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना, कहना किशु ना जाए। महापुरखा का बोलना हुए कित पर थाए, कोई अमृत भरे भरपूर है ऊना तिल ना तमाए। गुण का

सेन सेवड़ भागी जे उन्ना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लय सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हम मैं शब्द जलाए सो

साच रखा उर तार, मिलिया हुए न विछड़ै, गुर कै हेत प्यार, फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार, मनमुख मन न भिजई आत्मैले चित कठोर, सप्पै दुध पी आईऐ अंदर विस निकोर, आप करे किसे आखियै आपे बख्शन हार, गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया शिंगार, सच्चा साहु सच्चे बन जारी उतै कूड़े ना टिकन, उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन, हम मैला जग फिरै

सुतिया गुर सलाहीऐ उठदिया पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै हौं तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौं तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अका

पुरख सुजान सतगुर मीत मलाया, मैं सदा सदा तेरा तान, सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब मैं रहया समाय, राम नाम धन संचया, साबत पूंजी रास, नानक दरगाह मन्या, गुरपूरे साबास, राग सूही अष्टपदियां महला पंजवा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उर्ज रहयो बिख्या कै संगा, मनह व्यापत अनक तरंगा, मेरे मान अगम अगोचर, कत पाईऐ पूर्ण परमेश्वर रहाओ, मोह मगन में रहया व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

आदि मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल शरणाय नारायण दीनानाथ भगत परायण रहाओ अनाथानाथ भगत पै मेटन साध संग जमदूत ना भेटन जीवन रूप अनूप दयाला रमन गुणा कटिए जम जाला अमृत नाम रसन नित जापै रोग रूप माया ना व्यापै जप गोविंद संगी सब तारी पोहत नाही पंच बटवारी मन बच क्रम प्रभ एक त्याई

विनसनी कूड कमावै धंद जियो नाम त्यावै से जिन चले गुरपूरे संबंध जियो हुक्मे जोग मह आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो।

ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा, जिन मन विठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार, तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर दसवां काफी।

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुर जीवै कृपाल कित्ती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप वधानिया एक भोरी नदर निहाल देह दर्स रंग माणिया जय जिथे मन धीरी है किल विक मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया परपूरे होए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्ब लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम नदा

वही बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पाइन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सोद तत बिचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसर नाही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हों क्यों सहो रावण जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो जिन्नी सखी सहो रावया ते अंबी छावड़ी एह जियो से गुण मानना आमनी हौ कै जी दोस त्रेउ जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाउ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हौ सद कुरबान तेरे जाऊं जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यो लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा सजियो हौ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरनिया बग बिहठे आए जियो सा धन चली सोहरै क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल किया भुली वाकड़ी आस जियो तै सह नालो मुतियस दुखा कू त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागन काई रात जियो सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुदे अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा बास जियो भाणे तख्त वडाइया भाणे भीख उदास जियो भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो भाणे भवजल लंघी है भाणे मंझ परियास जियो।

आस जियो तू सौ अगम अतोलवा कौ कह कह कह पई आस जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख

जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए।

सी चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

पाद हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

हर नाम रतन परवानु पात मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

ता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छले परपंच मोह बेकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया मथ अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस

प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे।

पर कर जाही, साज नराते सच के संगे मन माही, मन माही साजन करह रलिया, कर्म धर्म सबाया, अठ तट तीर्थ पुन पूजा, नाम साजा पहाया, आप साजे थाप वेख तिसै भाणा पाया, साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया, अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने, आप मुस्ते मत होशी है क्यों राह पछाने, क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली बिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पह कर बेनंती, राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है, सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी, दुखी भर आया, दुखी भर आया जगत सबाया।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोहिलड़ा हर त्यावहु, गुरमुख हर फल पावहु, गुरमुख फल पावहु हर नाम त्यावहु, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटोह, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु, नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावहु, सुन हर गुण पीने सहज सुपाई, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पहु भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तेने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाई, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुरते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा, राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए,

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख ना लागे आई, दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याई, नानक

भगत करहें दिन राती, करगी मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखहें सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम संभाले, मन मुख भगत करहें बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होई राम, हमें माया रोग व्यापे, मर जन्म है दुख होई राम, मर जन्म है दुख होई, दूजे पाए परज बिगोई, बिन गुर तत ना जानिया, भगत विहूणा सब जग भरमिया, अंत गया पछतानिया, कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई, भगतां कै कर कारज साचा, हर गुण

निवासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोले जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सोहै दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंत रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हम मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे, शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे, दिन राती अपना साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता।

गुरमति घट चानण होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल होमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहो, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आग्या, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आए, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर

सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अन दिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गुआए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यो रलिया माणी सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा आराध हो, सब किलविख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एक को मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड़ भागिया बलराम जीओ। निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी। संत जना बड़ भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी। हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलिया सुपाई, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिवलाई। मन चिंदिया

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलिया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए। भये पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा, हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी, हर नाम प्यारे शब्द निसतारी। अज्ञान अंधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर कीजै, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया, व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई है तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावै चोटा खावै अंत गया पछताया। बिन नावै को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावे मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया।

गर्भ गवानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल तरिया जे पीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानो नानक सरन पया हर द्वार हो बल बल सद कुरबानो सुन बावरे मत जान प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिन्नी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जियो बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा।

जनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारी सुन भै बनासे।

मनुख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हों ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम गौहरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासा दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवां साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया राम संत चरण गुरु सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अल पूरन।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी करोड़ हस्त ते

वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया कर्म है नवनिध भरे भंडारा।

सगली तप्त बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई जन नानक प्रभ की सरनाई तिस बिन अवर ना कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुखा गामी।

काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करहे जयकारा राम गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

दान कीजे बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजे दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी देख दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

पूर्ण भगवान अवगण को ना चितारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीमा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आद अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल उतरे पारा, ना

प्राण आधार गुरु सतगुर कहे आजी साचा अगम विचार मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हम मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हों तिसकी दासी मरे न आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर फिर रावण जा

फिर मैं झूठ सब बिन सजाए ज्यों टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है ज्यों रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने

परहर हो लाल कर हो श्रृंगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हो मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां ए ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावे जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

हुआ। नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी। हम मैं माहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी, कोठे मंडप वाड़िया लग पए गावारी। जिनकी ये तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी, जिस बजाए सो

अर्थ मोल रस भोजन भाव करे तन मन सौंपे कंत कौ तौ नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले धन किया शिंगार सीजै कंत ना आयो इवें भया विकार महला तीजा धन पेरे एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कही है सोए पौड़ी भै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले भौ उपजे भै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हों मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार भौ भाव सब तिसदा सो सच वरतै संसार श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर

तू पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धूती तू मड़ी अंदर विसन कोर साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावै नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

सच्चै आपी एक दूजै भाई खुआयन होमै विच व्यापी यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल

सिफत सलाहन छड के करंगी लगा हंस फिट अवेहा जीविया जित खाए वधाया पेट नानक सच्चे नाम वेण सबो दुश्मन हेत पौड़ी ताडी गुण गावे नित जन्म सुवारिया गुरमुख सेव सलाहे सच्चा उरतारिया घर घर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम हों गुर को वारिया तू आप सुवार है आप सिरजन हारिया श्लोक महला पहला दीवा बलै अंधेरा जाए।

अस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करहे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

ना जपहु कमल मत लागी, मर जाए बे कहो क्या करो अपागे रहाओ। दुख सुख करके कटंब जीवाया, मरती बार इकसर दुख पाया। कंठ गहनु तब करन पुकारा, कह कबीर आगे ते ना सम्हारा। सूही कबीर जी थर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। रैन गई मत दिन पी जाए, पवर गए बग बैठे आए रहाव। काके करवे रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मन बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले।

देव हो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाव ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्म बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया इन्हो लिया उभारी रहाओ नौ डांडी दस मुनसफ धाव है रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापह नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया

सह की सार सुहागण जाने, ताज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे ना अंतर राख, अवरा देख ना सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

ललत बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मैं मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

रहाउ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासी।

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुई,

साचे तारिया अवर न सूझे गुर को वारिया नानक नाम रते निसतारिया बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहज त्यानी हर कै रंग रत्ता मन मानी मन मुख परम भुले बोरानी हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सत गुर बूझ बुझाई रहा मेरा प्रभ बिसर हो मरो दुखाली सास ग्रास जपो अपने हर भाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जानी गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करनी क्या कार कमाए हो मैं मेत चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा धारी दासन दास जन नानक हर नाम धन रास बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कतंब सहत सियों जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे पहला जन्म गवाया दूजा भाऊ ना देई लिव लागण जिन हर के चरण वसारी

लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावह आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हौ तिन बलिहार जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाइए हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे क्याए हर जीव आप वसे मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए रंग चलूले हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरे साच समाए अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हो मैं माया शब्द जलाई डर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरन को समसर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम इस जुग में वडे आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई सदा सुख दाता।

तोहे, कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु, क्यों तरियै बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावै पार, रहाउ पवन किलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से, हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल शिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपालता गुरु मलावे, हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर तिस महलाल, गुरु खोलिया पड़दा देख भई निहाल, जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद, आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव, तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव, सबनी थाई रवे आप, आद जगाद जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली, नानक दास खसम प्रतपाली, बलावल महला पंजवा, सुख नदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण

पूरा कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडिय है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटी है प्यारी चूके जम की काणी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बे अंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनस है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्द कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार। बलावल महला पंजवा विखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकती ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए।